0: आने जैसे ई ताली तो बन।
1: ताकुन हो जा तो ताकुन ढंग से मैं जिले इधर तो अलग बाव जी मैं भी दौरा था कि मेरा कल कफ़ा तो नहीं गिरल ऐसे दो आखिर बियारा मजल से नहीं आल दोले आकुल तो अलग उजवा उई द तो गंगे अपनो तो दो कन्ने गुरु जिले ताजिक मज मजवा जकला जो जला सा दो को जीरो को मजु गं ताजिक दम दम कुंडा देर की दम मजल बा तो एक मुलम को मामू बनो
0: माजी माजी ओबे कर्ची मैं भी दिगो कुंडल वाला है बात अल्ले ओबे ले बा पाने तू लोगो देने वी जीत ना तो ने कम दाग दुम बा कॉल्ड में इधा बा कोई कोई तारगो मज मज करी वारुई अलावा ओज नेगला जिलेंदा तो नेग ओजी तो जो पुंडासी दा करे जे दुजी जे ना जिलेंदा मज करे दो हेलो
2: हेलो स्वीट
0: हाँ ना वर्षी ने
2: एंड फॉर सिकेट्स पिग्स फॉर गेंस वर्क
0: आ तो ना वन
3: तो ना रन पच में
0: हाँ वर्षी लोग रन
3: टाइगर
0: हाँ
3: हाँ
0: हेलो माजी तो जो पहले ना तो लोग देने गुड़ जीत ना तो तो ने कम दो तांगामाई पनासे गोनान देने गुड़ लोम गोनान गोन गुड़ तो दिल्ली विजय द्वारा इन गोन वाला लगा गोनी उई द्वारा इन गोनान लगा ऐसे बॉबी उई द्वारा इन बॉबी दा गनान जिधर इनान मैं गोनी पाव उई लेंदा तो ने तो कितरो लेट ने बा ने जे तो कने यां तेरे की चाले इन जिगेले से अरब बनवा से अंबादे हो इन जिगे ही था जना बाद नाले तो कने दिया तो मैं लोगों योवा दे बारें दा तेल ले गरं हाँ इन इंगे तरला यां आ इना इया राडी उन बतोले आ इना राडी उन बना रासा जी उन आ इना राडी बन बिली लोगों ने रा पाना से उबा लारेल दा उबा साग थोल मी थोल मिसावा दा कर निंगले दा क्या कर निंगले तो की बा तुझी तुम बा लार बाय से तोले से गोदे नेले से थोरोसी लुआ ने जगना जिले ना ने गल का जिले तो तोगरो ने ना जिले ना तो जे तेल दूरी ना जे कम ना ऐसे दो ने ग्रांग तो बिल्ड मारे जे ना तेल दान दे बीने ना तो ने को माजल ने गने बा चिपा वा वो ने रा पता रे अरे गले काग काग मिले कार्गोस और जिस लोगे रोजाली दे चिया तुर देने दिग खेदे लेंदा ए परांगान जिग खेदे लेंदा तुंगान जिग बौदे लंजिगेल अंजिगदेल कान ने जेन जुदे शिगिया बा गंग तरपाना सेंग गंजे जिला कमदे लोंदो मंदो दोने दा तो नहीं जिग तो कदरे दिन बता रहे लो जिग ना जी हलो मच कर सी दो जो मची तुगु ने गल खा जे तो ने कहा किला कुछ दो दू मैं तो ने कहा कौन दुनी एलबा के काशी जरा लो ले दा कम काशी जरा जी मैं कहूँ कुआं दो तेले ने बादा कहूँ कुन एक डंग ने डॉर तादे लेन्दा तूने क माजल हर गले ने बा तो काग मिले का कौन सी कार्गोस जेले हर कार्गोस जे पातुगु बेले ला माज कार्सी दोजे ने जियां आउ दिसु ने जेया अम्बिरिसी ने जेया औला कमसिन दो ne je yan awra situku be me do ita dene si sa majel kara total me gere le gele to diwa 61 53 53 20 bardi pajitarle gele ne to re allo Frédéric
1: hey
0: dondui
1: emission show ma yan
0: ay barsi la bane
1: Mathieu
0: Walia. Merci, Frédéric. Voilà, ça va, Frédéric Pané. Ton égé, le goubo, de l'aide de goudou, jizi, bada pana ou bagou sou goubé, bada ka corni ka kilanan, tane goubé, ne laisse de ou il est bas, l'aide, l'aide, to larva, l'aide, oua. Ta ton égé, to comme douya. Ton égé, car si ta kanjije tark, c'est goudou kou. Tudo bem cá sim tudo bem da conduzir de ganhar dele com a toda da nega cardo se bogne tá dentro se disse maje ganho cogoto pa ala pana nele ninguetar lá e anda carrete lá oronide alô Hortense
4: oui
0: ah dono me perigo já me na carta ambata
4: ah mas a mão de ti acha
0: ah
4: Ah, tadi juga faham jadi bapa muda raja mune, bapa udah kuasa sih saya tu.
0: Ah,
4: lalu tu tadi neba itu ne kudun ni dah. Kudu tak sih dia kudun ni je sini, tu neglal. Ya me doje itu dah ya tak sih bune ya iban. Ah, bolu itu je dah misal dah. Then the winter that sang the ending of the winter so far, that I could get another
0: season.
4: Ah, but only Mamu. I look at any doubt as I put a face and edit that is largely the television and Pankara. Tell the car, large in other lockdown, but those are those are you little dingy.
0: So then,
4: Mamu, little woman,
0: Magia Hortense, maybe the gambata, Jamena Cartier Bata. Voilà, t'as le Hortense le bané, parce que je suis venu à l'Inda. Gonli, l'arli, akulalum, l'ara digital, l'ara tarilum, l'ara kune karibu salum, ne bandogudu ve yakun karibu salba. Me de oulele, ou la pa unne gno la kundi de kari. L'ara to pose la para l'ara itara unne de la kundi de kari wa. L'ara to pose la parce que l'ara itara unne ale, ile wa kaudu wa korba, e kaunja wa korba ndogudu ne ba de kusadi. Mengo dauleri sida pana ah od manamai akod man kare larle toro ola pat lar mge kai manle da un orda antu gudu mange do njia karandu ko kailo me ne jigna jelenda allo franco hey. Allo
5: ah
0: donde franco
5: ah ma mudan passe Ah bon, problème, il y a que ma gueule est bon, tout n'est gueule. Donc, on a fait aussi ya tu beli si dana kam tu arin ardan.
0: Halo, buta kerja la gudu. Kerja le Franco gudu. Kaya apa tu targa jipa, tunggu be. Membuat lenda karlesi le as gudel. Mais dimanche que rang leda da kya gan kar ku do mi san le. Allô.
6: Oui, allô.
0: Ah na wa barsine.
6: Ah o ben le watin ri wi ku dile.
0: Ah o ben ri ku dile.
6: Ah mama pa. Ba yi ni gu do wa ur do ru ya ni bi tele.
0: Ah.
6: Abba dur ba li ma ra ti lil ba.
0: Ah.
6: Ba sei kan ni bi ni le gu do kala za.
0: Ah.
6: Ah o ba sang di ni gina inda.
0: Mm.
6: Il faut que des arrangements finissent normalement.
0: Mm.
6: Voilà, il y a qui a donné l'église, voilà, il y a donné le route, il va y aller, à quoi nous m'a donné mes clés. Donc, quand Dova n'est gourou, il faut que la sang donné, voilà, ni les bébés. Et puis, à quoi la claire, voilà, ma femme a dit, ma mère n'a dit, c'est les bébés. À négocier, il est normal, maman, qu'a donné les qui. Mais avant de balayer au mandat de Rosalie, il y a des sacs et pas tant de Rosalie et tel de tout.
0: Tel de grand.
6: Tout ma carte de la toco viva.
0: D'accord. Madi. Voilà, Radio Tchad, il n'y a pas tout le qui n'a pas le sigue, bon de la couleur de Carcarda. Arrêtez, monsieur de l'ombat de Carlé, bon de la ciel à Togro. Mais dimanche, que dans l'état, à Bardier Menda, quand il y a des cargues, quand Carcas, au Missalin, à Bardier de Baro, quand il y a tout qu'un élevage. Ta pay tarke togro le tukube voilà je kundum karsi o jetto de Rigobert agidi Angèle ci debkara de ndusi matara ndu balam telum gayus jumashkara.